म्यूजिक एमजी तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

0: नजारा हिम्मत वाली
1: स्टाइल छ मेरो आफ्नै कतै कमाल कमी हैन सन पराउने हजार सन पठाउने को कमी छैन
0: चली चली हिम्मत सम्हाल्न लौ धनी धनी धनी